आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज 9 अगस्त के महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों के चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल।

आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए किशोर कुमार की आवाज का जादू। वो आवाज अगर आप सो भी रहे हो तो आपको जगा देती थी। एक लड़की भीगी भागी सी गाता रहे मेरा दिल, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। और योडलिंग के किंग, उनके जैसा हिंदी फिल्मी दुनिया के बैकग्राउंड सिंगिंग में, पार्श्व संगीत में शायद ही कोई हुआ हो। रूप तेरा मस्ताना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मेरे सामने वाले खिड़की में, और कई गाने उन्होंने दिए। बाल गंगाधर तिलक भारत के शायद एक सबसे बेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स, उनको श्रद्धांजलि। आपकी फरमाइश पेश करूंगा महक 2RRR 88.5 FM पर, और उसके लिए आपको केवल फोन उठाना है और नंबर घुमाना है 02981622777 02981622777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं www.2RRR.org.au पे जाकर, लिसन ऑनलाइन प्ले बटन।

अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से सुन सकते हैं, और अपने मोबाइल पर सुनने के लिए आप एक फ्री ऐप, मुफ्त ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फेवरेट ऐप स्टोर से। ऐप का नाम है कम्युनिटी रेडियो प्लस, कम्युनिटी रेडियो प्लस। और आप जहां भी हो अपने मोबाइल के साथ, महक आपके साथ है।

0: किशोर कुमार जन्म हुआ एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में और वो खंडवा में जन्मे 4 अगस्त 1929 को। जन्म का नाम था उनका आभास कुमार। कुंजलाल गांगुली वकील थे उनके पिता और बड़े भाई थे अशोक कुमार और अनूप कुमार और दोनों ही फिल्मों में थे। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बड़े भाई अशोक कुमार की वजह से फिल्मों में काम करने लगे, नाम रखा किशोर कुमार और उसी नाम से आज हमें वो याद हैं, हम उन्हें याद करते हैं। फिल्म जिद्दी में उन्हें गाना दिया गया मामे की दुआएं क्यों मांगूं। उस समय के गायक केएल सहगल से बहुत प्रभावित थे उस समय के बहुत से गाने में पहले कदम रखने वाले गायकों की तरह। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उनके दिल में बहुत बड़ी इज्जत थी। हॉलीवुड के एक्टर डैनी के बड़े फैन थे। तीनों हस्तियों केएल सहगल, रविंद्रनाथ टैगोर और डैनी के, इन तीनों हस्तियों की तस्वीरें उन्होंने अपने घर में लगा रखी थी और हर सुबह नमन करके ही वो दिन की शुरुआत करते थे। और हम आज शुरू कर रहे हैं उनकी एक बहुत मशहूर फिल्म चलती का नाम गाड़ी के इस गाने से। और इस गाने से पहले आज के सुपरस्टार और किंग जिन्हें कहते हैं हिंदी फिल्मी दुनिया के, शाहरुख खान कुछ कह रहे हैं उनके बारे में।
1: एक दो गाने ऐसे हैं जो पुरानी फिल्मों के, मुझे बहुत दिल चाहता है कि अगर हो सके तो मैं उन्हें खुद करूं, और उनमें से एक गाना है जो आई थिंक मोस्ट रोमांटिकली पिक्चराइज्ड है। और दो ऐसे आर्टिस्ट जो देखने में एकदम एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, लेकिन देयर सो मच मैजिक व्हेन दे कम टुगेदर। वन इज मिस्टर किशोर कुमार एंड द अदर इज मधुबाला। उस गाने में मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगती है इज द अमेजिंग डांस क्वालिटी जो मिस्टर किशोर कुमार लाए हैं उस छोटे से रोमांटिक बीट के अंदर। किशोर कुमार एकदम पागल है उस गाने।

देवानंद साहब की एक फिल्म आई मुनीम जी, और फिल्म मुनीम जी में किशोर कुमार ने एक गाना गाया जो उसी समय ही नहीं उसके बाद भी सुपरहिट गाना बन गया।

और उसके बाद आई फिल्म देवानंद साहब की सुपर डुपर हिट पेइंग गेस्ट, और उसके भी गाने बहुत ही मशहूर हुए, जैसे कि ये गाना माना जनाब ने पुकारा नहीं। जी हाँ, और बहुत ही प्यारा भी है ये गाना, और किशोर दा की आवाज़ में है तो प्यारा तो होना ही था, साथ में ही सबको अपने वश में करने वाला गाना है। तो उम्मीद है कि ये गाना भी आपको पसंद आएगा।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और किशोर कुमार कहते हैं, सुनने में ऐसा आया है, कहानी यही कहती है कि किशोर कुमार एसटी बर्मन साहब की खोज थे और उन्होंने ही उनको प्रोत्साहित किया कि अपनी अलग आवाज में गाएं और उन्होंने उनका साथ शुरू से दिया, उनको अपनी फिल्मों में जगह दी, खासतौर से देव आनंद साहब की फिल्मों में, और अंत तक साथ रहा फिल्म गाइड तक, जिसमें गाता रहे मेरा दिल बहुत ही मशहूर हुआ। और वो केवल फिल्म नहीं मशहूर हुई, उसके सारे गाने भी मशहूर हुए, क्योंकि एक तो किशोर कुमार जी की मधुर आवाज़ में थे और दूसरा एस टी बर्मन साहब का बेहतरीन संगीत था। और उनको अफसोस यह है कि इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सका। तो पेश है आपके लिए ये दिल को छूने वाली आवाज़, गाता रहे मेरा दिल।

0: तो बजकर 26 मिनट हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का, कहीं जाइएगा नहीं। संदेशों के बाद किशोर जी के गाने लेकर एक बार फिर हाजिर होऊंगा महक 2RRR 88.5 FM पर। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने का। नंबर है 02981622777 02981622777। फील द म्यूजिक, माफ कीजिए, फील द मैजिक ऑफ डिज्नीज द लायन किंग नाउ शोइंग एट सिडनीज कैपिटल थिएटर। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड्स नंबर वन म्यूजिकल एज दिस अवार्ड विनिंग प्रोडक्शन ब्रिंग्स ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स, अनफॉरगेटेबल म्यूजिक एंड spectacular performances to the stage. Get your ticket now and don't miss your chance to witness one of the world's most beloved musicals. Plan your experience and see what else Sydney has in store at the sydney.com website.
1: Where's a great place to socialise or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: Are you either a teacher,

0: A parent involved in a school's PNC, an educator, or a homeschool parent? Is your affiliated school located in the City of Ryde's local government area? And are you passionate about environmental education? Then REEN, REEN, might be for you. That's the City of Ryde's Ryde Environmental Education Network. It aims to inspire and empower like-minded people to incorporate environmental education into their classrooms. REEN's next meeting will be held on Wednesday the 26th of August between 4 and 5:30pm at a location yet to be advised. For more information, search Ryde Environmental Education Network Meeting Term 3 and book via Eventbrite.
1: If you love listening to your local sound to the world, then why not show your support and become a financial member? Phone our office today on 02 9 816 2988 or head to our website 2RRR.org.au.
2: संदेश के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर आज 9 अगस्त के महक कार्यक्रम में जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूं किशोर कुमार जी की आवाज का जादू. किशोर कुमार जी धूमधड़ाके वाले रोमांटिक गाने और नाच गाने वाले गाने और मजाकिया गाने और योडलिंग बहुत ही अपने ही अंदाज में करते थे, लेकिन उनके जो सीरियस गाने हैं, जो मन में सोज पैदा करने वाले हैं, वो भी दूसरे गानों की तरह बहुत ही प्रचलित हैं. ऐसा ही एक गाना है फंटूश फिल्म का, दुखी मन मेरे, और इसे पसंद किया है माही ने.

बहुत ही एक मन में सोज पैदा करने वाला गाना, और एक ऐसा ही गाना है जो एक फरमाशी गाना है, और ये गाना जो है इसके बोल हैं ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, और किशोर दा ने इसमें इतना दर्द और इतना प्यार दोनों मिलाकर भरे हैं कि बस सुनते ही जाने को दिल करता है। तो पेश है आपके लिए ये फरमाशी गाना।

बीबीसी हिंदी में समाचार आया 4 अगस्त के उनके बुलेटिन में। बीजेपी नेता और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अनशन किया था जंतर मंतर पर। विनेश फोगट, साक्षी मलिक और 4 अन्य महिला पहलवानों का साथ दिया था बजरंग पूनिया ने। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को मामले में बरी कर दिया। फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आता है या कोई आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। बजरंग पूनिया ने कहा, आज का जो फैसला आया है उससे ये साबित हो गया है कि सारी ताकत उनके पास है। उन्होंने गवाह तोड़ दिए। समझ नहीं आ रहा कि किस आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। विनेश फोगट ने कहा कि अब हाईकोर्ट का राह लेंगे। और हम राह लेते हैं अगली फरमाइश का। और अगली फरमाइश जो है वो है फिल्म, माफ कीजिए, ये जो गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये है फिल्म 2 रास्ते का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का यह है इसमें संगीत। और ये भी एक सोज वाला गाना है और इसमें सोज कूट कूट कर भरा हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि किशोर कुमार की आवाज़ सोज वाले गानों में अच्छी नहीं होती या उन अलग होती है, तो सुनिए इसको और आपको किशोर किशोर किशोर ही सुनाई देंगे इस गीत में और सोज के साथ। और इसको पसंद किया है रेखा ने।

मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी है उसको जवाब देने के लिए कहा गया था सरकार द्वारा एक पोस्ट हटाए जाने के लिए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ये उनसे मांग की थी और ये था प्रधानमंत्री का नीट NEET जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल के लिए भारत में, जिस पे खूब घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुए थे वगैरह वगैरह, और प्रधानमंत्री का नीट और युवा प्रदर्शन से संबंधित वीडियो क्यों टेम्परेरली हटाया गया। तो मार्क ज़करबर्ग जो मेटा के कर्ता धर्ता हैं, चलाते हैं, और वो उन्हीं की अल्टीमेटली जिम्मेवारी बनती है मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्या जाता है क्या नहीं जाता, तो उन्होंने मेटा की ओर से मंच संचालन में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली है। तो अब मतलब सब ठीक ठाक हो गया है, और यहाँ ठीक ठाक होगा जब आपकी फरमाइश सुनाई जाएगी। और अगला गाना जो है वो है फिल्म रंगोली से। रंगोली के इस गाने के बोल हैं, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। माफ़ कीजिए, ये वो वर्जन नहीं है जो आपको मैं सुनाना चाहता था। तो जो वर्जन आपको सुनाना चाहता हूँ वो वर्जन उम्मीद करता हूँ आपके लिए पेश कर पाऊँगा। और तो कोशिश यही है कि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन अक्सर हो जाती है। तो पेश है आपके लिए छोटी सी ये दुनिया।

बहुत ही प्यारा गाना और किशोर कुमार जी की बेहतरीन आवाज और इस आवाज का जादू आज भी छाया हुआ है हम सब पर और हम एंजॉय करते हैं उनके गाने. सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित नीट NEET जो कि पेपर लीक का मामला है, नीट पेपर लीक के विरुद्ध हुए FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने की सलाह दी है. केवल जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनको छोड़कर. CJI ने यह भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों को बेवजह सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए और पैलेट गन जो कि रबर पैलेट्स चलाती है कारतूसों की तरह जगह, पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए, यह भी कहा अदालत ने. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजी नगर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू कर दिया है. आने वाले समय में नई रणनीति के एजेंडा की भी घोषणा की उन्होंने, जिसमें शामिल हैं स्कूल कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस का मुद्दा, जिसके कारण कई परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते और उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल हो गया है. राजनीति में हो रहे लोकतंत्र विरोधी ट्रेंड, लोग कहते हैं सुबह हम एक पार्टी को वोट देते हैं और शाम को कोई और पार्टी के हो जाते हैं. वो सुबह हम एक सरकार को चुनते हैं, शाम को कोई और सरकार बना लेती है, पार्टी सरकार बना लेती है. चुनाव आयोग के काम पर भी जनता को भरोसा नहीं रहा है. एक समय था जब वोटर्स सरकार चुनते थे, आज सरकार वोटर चुन रही है. उनका इशारा सर की तरफ है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है वोटर्स का. न्यायपालिका में अमीरों को प्रेफरेंस दी जाती है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती या उनके मामले वर्षों वर्ष लटकाए जाते हैं. लेकिन हम आपकी फरमाइश नहीं लटकाते. और ये भी एक फरमाइशी गाना है और ये फरमाइशी गाना है किशोर कुमार जी की एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, और उसका यही गाना, मेरे महबूब कयामत होगी.

उम्र 116 साल, नाम नवनी थम्मा, तिरुपति मंदिर जो के साउथ में है, मद्रास स्टेट, तमिलनाडु स्टेट में, जो आजकल तमिलनाडु कहलाता है, तिरुपति मंदिर के दर्शनों के लिए 11 किलोमीटर का अलीपीरी मार्ग तय किया उन्होंने 3,550 सीढ़ियां चढ़कर, तब जाकर तिरुपति मंदिर के द्वार पर पहुंची 116 साल की नवनी थम्मा। आंध्र प्रदेश, माफ कीजिए, ये आजकल स्टेट्स इतने बन गए हैं याद नहीं रहते, तो ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है तिरुपति मंदिर। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी नवनी थम्मा की तारीफ की। तिरुपति मंदिर के चेयरमैन बीआर नायडू ने उन्हें वीआईपी सम्मान दिया और उसके साथ उन्हें मुख्य द्वार से गर्भगृह तक ले गए। पास से भगवान के दर्शन पाकर नवनी थम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था, और हम भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने 116 साल की उम्र में ये काम कर दिखाया सबको। और हम चलते हैं अगले गाने की ओर, और ये किशोर कुमार जी की आवाज़ में है, फिल्म दूर गगन की छाँव में फिल्म का गाना, और ये भी एक थोड़ा सोज भरा गाना है।

और अगला खाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है फिल्म अंदाज का, और ये बहुत ही पॉपुलर खाना है किशोर जी की आवाज़ में, और इसमें बहुत ही कमाल दिखाया गया है उनकी योडलिंग का। तो पेश है आपके लिए फिल्म अंदाज का ये बेहतरीन गाना महक 2RRR 88.5 FM पर।

किशोर कुमार जी ने चार शादियां की. पहली शादी उनकी हुई, उनकी पत्नी का नाम था रूमा घोष. रूमा घोष से पहली शादी की. दूसरी शादी उन्होंने की मधुबाला जी से. तीसरी शादी उन्होंने की योगिता बाली से. और चौथी शादी की लीना चंदा वर्कर जी से. उनके बारे में वैसे तो बहुत सी कहानियां मशहूर थीं और कुछ दिलचस्प भी थीं और कुछ हैरान करने वाली भी. जब उनका सेक्रेटरी कहता था कि पैसे मिल गए, तभी किशोर जी गाना शुरू करते थे. एक प्रोड्यूसर के घर तो, जिनका नाम है आरसी तलवार, वो रोज सुबह जाते और घर के सामने खड़े होकर पैसे मांगते, जोर से बोलते हुए कि हे तलवार, दे दे मेरे 8,000. और तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उनको पैसा नहीं मिला. और फिल्म दाल में काला के लिए बिपिन गुप्ता को 20,000 रुपए देने थे. अरुण कुमार मुखर्जी के परिवार को हर महीने वो पैसे भी भेज, माफ कीजिए, ये जो 20,000 रुपए देने थे उन्होंने इसी तरह से निकलवाए. और दिल के वो बहुत बड़े भी थे. अरुण कुमार मुखर्जी के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद हर महीने पैसे भेजते रहे, ऐसा बड़ा दिल था उनका. और एक प्रोड्यूसर को भी उन्होंने पैसे दिए थे क्योंकि उसके पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे और किशोर कुमार जी उनके दोस्त थे और चाहते थे कि वो फिल्म बना पाएं. तो कुछ बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ लखनऊ शहर के बारे में. यूं तो लखनऊ शहर नफासत एलिगेंस के लिए मशहूर है, लेकिन उसके साथ साथ मशहूर है वहाँ का स्वादिष्ट खाना. खाने में कबाब, रुमाली रोटी, बिरयानी, ये सब मशहूर हैं. लेकिन अगर पूरे दिन वहाँ व्यतीत करना चाहें तो सुबह से शाम तक आपको बहुत अच्छा खाना मिल सकता है. सुबह आप शुरू कर सकते हैं कुलचा और निहारी से. निहारी एक तरह का मीट का डिश होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है. दोपहर में अवधि बिरयानी और आप नफासत का मज़ा लोगों के साथ अवधि बिरयानी खाकर ले सकते हैं. शाम को शीर माल, रुमाली रोटी और कोरमा, और मीठे में मक्खन मलाई कुल्फियां. तो ये थी कुछ बातें लखनऊ शहर के बारे में. और अगला जो गाना है वो एक फरमाइशी गाना है, फरमाइश की है राज ने. और ये है मधुबाला जी के साथ थी उनकी ये बेहतरीन फिल्म चलती का नाम गाड़ी, उसका है ये गाना. और इसमें भी उनकी योडलिंग का कमाल है.

और एक गाना जो है ये भी एक फरमाइश गाना है और ये थोड़ा हंसी मजाक वाला गाना है और इसके बोल भी कुछ ऐसे ही हंसी मजाक वाले ही हैं। और इस गाने को सुनने से पहले आपके लिए बता दूं कि अगले सप्ताह कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं। फिल्म बंटवारा आ रही है 14 अगस्त को, बंटवारा 1947, बंटवारा 1947। और इसके प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने एक सवाल के जवाब में अपने पिता धर्मेंद्र की कही बात दोहराई, अगर भारत मेरी माँ है तो पाकिस्तान मेरी मौसी है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया तो सोशल मीडिया पर सनी देओल को ट्रोल किया गया। एड कितने मिलते हैं यह स्टार की ब्रांड वैल्यू तय करता है। शाहरुख खान आज 36 ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ नंबर एक पर हैं। रणवीर सिंह 163 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर दो पर हैं। विराट कोहली 158 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर तीन पर हैं। 7 अगस्त को जन्म हुआ केशव मुखर्जी का, जिनकी शराबी की एक्टिंग को लोग एक्टिंग ही नहीं असल में ऐसे ही हैं वो समझते थे, और समझते थे असल में दारू के नशे में ही वो पर्दे पर हैं। 1981 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला में दारू के नशे में ही वो पर्दे पर हैं। 1981 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला उन्हें

मा शिकाना है इसको सुनते हुए आप भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं 02-9816-2777 नखरे वाली नखरे वाली

0: multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website, 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
1: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर आज किशोर कुमार जी के गानों के इस कार्यक्रम में बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ रत्नागिरी महाराष्ट्र में मराठी परिवार में नाम रखा गया केशव गंगाधर तिलक पिता स्कूल टीचर थे और संस्कृत के विद्वान वो केवल 16 वर्ष के थे जब पिता चल बसे पिता की मृत्यु से 6 महीने पहले उनकी शादी हो गई 1877 में बीए किया फर्स्ट क्लास में मैथ्स डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से 1879 में एलएलबी की गवर्नमेंट कॉलेज पुणे से 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गोपाल गणेश अगरकर महादेव बलाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिप लुंकर के साथ शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ ये काम आगे चलकर कारण बना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का 1885 में भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की भावना उजागर करने के उद्देश्य से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को शुरू किया गया था गांधी जी से पहले बाल गंगाधर तिलक जी को भारत की आज़ादी और देशभक्त के नाम से बड़ा सम्मान दिया गया लेखक सर वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का नाम दिया 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने 22 जून 1897 कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की गोली मारकर हत्या की गई छापेकर ब्रदर्स क्रांतिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र मराठा और केसरी द्वारा हत्या को बढ़ावा देने के जुर्म में 18 महीने की सजा सुनाई गई जेल से छूटने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी एक शहीद और देशभक्त के तौर पर स्वागत के भागी बने बाल गंगाधर तिलक को ने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बंगाल के बंटवारे के बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन चलाए गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को कमजोर बताया बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय ने समर्थन किया उनका जब पूछा गया कि आजाद भारत में क्या वो मराठा शैली की सरकार चाहेंगे जवाब दिया मराठा शैली 18वीं और 19वीं सदी की थी 20वीं सदी के भारत में केंद्र शासित भारत चाहते हैं जिसमें सब प्रदेश बराबर के हिस्सेदार हों और सबका सम्मान हो हिंदी को देवनागरी लिपि में देश की भाषा बताया 1909 में एक बार फिर बाल गंगाधर तिलक जी पर सरकार विरोधी गतिविधियों का केस चला देशद्रोह का भी चला मोहम्मद अली जिना उनके वकील थे उन्हें मंडले वर्मा में 6 साल की सजा सुनाई गई आरोप था प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों का समर्थन अपने समाचार पत्र केसरी में करना जब दीनशॉ डी डावर ने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहा मैं केवल यह कहूंगा कि जूरी के फैसले के बावजूद मैं यही कहूंगा कि मैं बेकसूर हूं और कुछ और ताकतें भी हैं जो देशों और मनुष्यों की तकदीरें लिखती हैं शायद तकदीर का फैसला यही है कि मेरा काम मेरी जुबां या मेरी कलम से ज्यादा मेरी पीड़ा से सफल हो वो लोग 1908 से 1914 का मंडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा। जेल के दौरान गीता रहस्य किताब लिखी। गीता रहस्य के होने वाली आमदनी आज़ादी की लड़ाई में काम में लगाई गई। बाल गंगाधर तिलक जी ने महात्मा गांधी पर केवल अहिंसा अपनाने के विरुद्ध जोर डालना जारी रखा और किसी भी कीमत पर स्वराज के लिए जोर डालना जारी रखा। 1916 से 1918 ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी स्वर्ग सिधार गए, उनको शत शत नमन। और आइए चलें अगले गाने की ओर, जो है फिल्म तीन देवियां का, और इसे सुनते हुए हमारा नंबर है 02-9816-2777 और इसको पसंद किया है सुधा ने।

और अब बातें हमारी जन्मभूमि की, कुछ इधर की कुछ उधर की। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप आए हैं। मंदिर के ट्रस्ट ने इस चोरी का खंडन किया है और कहा है जांच के लिए तैयार है। तहलका समाचार पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को नवंबर 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट केस में गिरफ्तार किया गया। 2014 में जमानत मिली, 2021 में केस से बरी हो गए। गोवा की सरकार ने केस का पीछा नहीं छोड़ा और हाईकोर्ट में अपील की। 30 जुलाई 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी। इस बीते सप्ताह तरुण तेजपाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 देशों का दौरा किया। राज्यसभा में लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि इन 23 देशों के दौरे पर कुल खर्च 180 करोड़ रुपए आया। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की इस बीते सप्ताह। चर्चा अब ये हो रही है कि क्या शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन बनेगा और अगले पंजाब के चुनाव में वो गठबंधन सरकार बनाएंगे। 15 अगस्त को 79वें इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री जी जो भी देश के होते हैं, जो आजकल नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। और इस दिन 15 अगस्त 79वें इंडिपेंडेंस डे को होगी अब तक की सबसे सख्त और हाई टेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट। 20,000 सिक्योरिटी एजेंट्स होंगे, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा और अंडर व्हीकल चेकिंग की जाएगी, सीसीटीवी लगाए जाएंगे और ऐसे और कई से तरीके अपनाए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ केवल एक ही तरीका अपनाते हैं और वो है आपकी फरमाइश का। और ये है राजेश खन्ना जी की शायद सबसे सफल फिल्मों में से एक, आराधना का ये गाना। यूँ तो आराधना में किशोर जी ने और भी गाने गाए हैं लेकिन ये गाना कुछ मास्टरपीस ही है और साथ ही ये शांति की पसंद भी है। तो पेश है आपके लिए रूप तेरा मस्ताना।

और अब बातें कुछ हमारी कर्म भूमि की. इस साल अक्टूबर के महीने में लॉन्ग वीकेंड जो आएगा उसमें पोप लियो द 14th सिडनी आ रहे हैं. सभी क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा ये. नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नेप्लान टेस्ट के नतीजों से पता चलता है कि एक तिहाई छात्र मैच में पीछे हैं. बच्चों में अटेंशन स्पैन का कम होना इसका जिम्मेवार ठहराया गया है और अटेंशन स्पैन कम होने के लिए स्क्रीन टाइम को खास कारण माना गया है. ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व में सबसे आगे है रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने में. ऑस्ट्रेलियन सरकार का गोल है कि 2030 तक 82% रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल हो और इसमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पीछे घसीट रही हैं. उन्हें और सोलर पैनल्स लगाने होंगे इसके लिए. इमिग्रेशन लॉज में कथित बदलाव पर भारी विरोध है. बदलावों में है शामिल एक्सटेंडेड फैमिली वीजास पर अंकुश. माइग्रेंट्स का कहना है कि परिवार समाज का स्तंभ है, इससे समाज बेहतर चलता है. स्कैंडियम एक रेयर मिनरल है जो फाइटर जेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनाने के काम में आती है और इसे अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से निकाला जाएगा. और अमेरिका यूएस के पेंटागन जो है उसने $500 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है इसमें. और हमने केवल घोषणा की है कि अगला फरमाइशी गाना जो है वो है फिल्म पड़ोसन से. और किशोर जी ने क्या गाना गाया है, ये बहुत ही बेहतरीन गाना.

ये वर्जन जो है इस गाने का मैंने इसलिए आपको सुनाया है क्योंकि ये फिल्म में शामिल नहीं किया गया था और इस गाने में थोड़ा सा सोज भी है और फिल्म प्रोडक्शन आप जानते हैं एक कॉमेडी टाइप फिल्म थी, हालांकि खूब रोमांस भी था और बहुत अच्छा इसमें संगीत भी था। और राजेश खन्ना जी के लिए तो किशोर जी ने बहुत ही गाने गाए हैं, शायद ही किसी और प्लेबैक सिंगर ने राजेश खन्ना जी के लिए इतने गाने गाए होंगे जितने किशोर जी ने गाए हैं। तो अगला गाना भी किशोर जी की आवाज़ में है, फिल्म है राजेश खन्ना जी की कटी पतंग। और आपको बता दूं कि उनके जन्म के शहर खांडवा में मध्य प्रदेश सरकार ने उनका मेमोरियल बनाया है और कमल के फूल की शक्ल के इस मेमोरियल में बीचों बीच किशोर जी की लाइफ साइज स्टैचू है। विजयंती माला जी ने उनके बारे में ये कहा है कि वो हमेशा मस्ती मजाक से भरे रहते थे, अक्सर कहते थे आप तो ताल में करते हैं सब कुछ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बेताली हो जाती है तो मुश्किल पड़ता है। मन्ना डे जी ने कहा कि किशोर जी की आवाज़ सभी प्लेबैक सिंगर्स से अच्छी आवाज़ थी, वो जब गाते थे तो लगता था वो कोशिश ही नहीं कर रहे गाने की, उन्होंने कोई क्लासिकल संगीत की शिक्षा नहीं ली थी लेकिन वो मेरे से भी बेहतर गा सकते थे क्योंकि उन्हें संगीत की सहज समझ थी और गायकी का हुनर था उनमें। और आपको बता दूं कि मरने के बाद उनके भारत रत्न से, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के कई बार मांग की गई है लेकिन हमें मांग की गई है इस गाने की। तो पेश है आपके लिए ये शाम मस्तानी।

आने वाले सप्ताह में जिन कलाकारों के जन्मदिन हैं उनमें शामिल हैं श्रीदेवी, सुनील शेट्टी, अदनान सामी, सुनिधि चौहान, राखी, विजयंती माला और सावन कुमार टक। मशहूर लोगों में शामिल हैं विक्रम साराभाई, श्री औरोबिंदु, फूलन देवी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी और महान लेखक कुलदीप नायर, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्टिंग भी की और पॉलिटिकल आइडियाज़ पर आर्टिकल्स भी लिखे। और किशोर कुमार जी 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। और एक बहुत ही उनका यादगार गाना है, वो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, महक 2RRR 88.5 FM के 9 अगस्त के इस कार्यक्रम के आखिरी गीत के तौर पर। नमस्कार।